0: तुम्हारी का क्या करवा था जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो।
1: पावर पावर एजे से शुरू होना एजे से खत्म हुई। पावर तो हर क्यों कहां से ले ली।